बने दुनिया चलो ये हुआ है या दुनिया चलो ये हुआ है या दुनिया चंदुरा का चौकुरा फिर मंगल दुनिया जानो न बेंटा के वाली न चौकुरा बेंटा के वाला बजे चंदुरा बो मुना सवा चंदुरा बो मुना सवा अरवासी का बावा अरवासी का बावा बगां पूरा मचिला बगां कोई में फोटो वाबरू बगां कोई में फोटो वाबरू पूरा मुझे मनो मुझे ये नो बिगिया उनका सोचा कसा देनो मुझे ये नो करा उनका सोचा कसा देनो ये बार गिरे निना कुंभोरा कोई में निना कुंभोरा कोई में बल्ला तो गया यारा तब बोधा बुदे मुझे पूरा ते मुकिलो तब बे गुंसरो ते बा मुझे पूरा ते मुकिलो बेटा को तुला सा तुला जिया ये लो तो सुवे पर गांधे ये लो सारे पर बाबा ये लो सारे